0: are listening to Alive 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au.
2: Hello, I'm Kim Cartwright. Federal police say six children in the Philippines have been removed from harm following an investigation into a man from Albany. Jamie Smith reports.
3: The 53-year-old was intercepted by border officials on his return to Perth from the Philippines in late March. ABF officers allegedly found a mobile phone which contained child abuse material and communications with a Filipino person suspected of facilitating the procurement of children. Australian Federal Police informed Philippines officials of the alleged abuse and the suspect, leading to six children being taken to safety by National Police. The Albany man was first charged on the 27th of March with multiple counts of accessing child abuse material and intending to engage in sexual activity with children. Jamie Smith, Perth.
2: Western Australia now has two confirmed cases and two suspected cases of the fatal and highly contagious H5 bird flu. Three have come from migratory birds in the Esperance area, one from Quinterlup in the southwest. Agriculture Minister Jackie Jarvis says there have been 375 calls to the Emergency Animal Disease Hotline in the past week. The US has targeted Iran in a fresh drone attack as President Donald Trump accuses Tehran of violating a peace deal. The US Central Command says the strikes were in response to an Iranian attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz. Both parties agreed to end the conflict under a memorandum signed just 10 days ago. International rescuers are assisting in the search for survivors trapped under rubble after two earthquakes struck Venezuela. And a signing ceremony for an Israel-Lebanon agreement is expected in Washington today, but deep divisions remain over the scope of any Israeli withdrawal from southern Lebanon. Israeli Defence Minister Israel Katz has said the military will not pull back from its security zone, while Hezbollah's leader Naim Qassem has demanded a complete and unconditional Israeli departure from Lebanese territory. The Lebanese Health Ministry says more than 4,000 people have been killed since the Israeli military operation began in March. More from Tel Aviv with Blake Sifton.
4: Israeli officials, including Prime Minister Netanyahu, have constantly and consistently said that they are not going to leave southern Lebanon, and they say they'll stay as long as is necessary. Other officials have said that they won't leave even if the U.S. demands it. And we recently heard 2 days ago from Israel's defense minister, Israel Katz. He said the Israeli military would not withdraw. And he said that the 200,000 people who have been displaced from southern Lebanon by this Israeli invasion and occupation, that they will not be going back either because their communities are in ruins and their homes have been destroyed.
2: Police have charged a 19-year-old with murder following a fatal crash in WA's Midwest earlier this week. The teenager's car collided with a motorhome in White Peak, northeast of Geraldton, on Tuesday night. Three people were inside the motorhome when it burst into flames. A 29-year-old woman was killed, two others injured. This is Air News. Adelaide will be looking to continue its run of good form when they face Port for Showdown 60 in tonight's AFL. They've made two changes. Defender Josh Worrell and Isaac Cumming return after overcoming a virus and injury respectively. Coach Matthew Nix says he'll be adding a boost to the side.
5: The game's challenging us in different ways, but Isaac's in a really good space. He was one that last week we were contemplating getting a game into him, and you know, in the end this week he'll come straight back into AFL.
2: Last night at the MCG, Hawthorn 14-12-96 beat the GWS Giants 12-10-82. The Broncos have now lost seven in a row in the NRL after going down to the Roosters 18-24 last night. The Broncos led 16-12 at halftime after the Roosters made far too many errors. However, the Roosters managed to turn it around. Sydney halfback Daly Cherry-Evans says they're happy with the win.
6: They had everything to play for tonight, and it looked like that and it felt like that. So we've still got a lot left in us, and tonight showed that. But at this time of the year, to get another 2 points, we'll take that.
2: In the earlier game, the Bulldogs secured victory over the Titans 30-12. Aussie Talia Gibson has been drawn to face 21st-seeded player Marie Buskova in the first round of Wimbledon. It will be the second time the two have met at a Grand Slam following a tight first-round clash at the Australian Open. The 22-year-old ready for the challenge.
7: Going to this match, it's just, for me, going to be about how well I can just focus on myself.
0: Around the world.
1: Around the globe.
0: Streaming live 24-7.
8: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. और आज वैसे ट्रैफिक आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, मुझे लगता है कुछ पता नहीं, मेरे अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है. पहले मेरे घर से स्टूडियो आने में लगता था 15 मिनट, अब लगता है कुछ ज़्यादा ही. आज तो 30 मिनट लग गए मुझे आते आते. लेकिन आज मैंने सोचा कि हम थोड़ा, मैं लोगों से बात कर रही थी कि कैसे शो में क्या बात करें, कैसी चीज़ आप सुनना चाहेंगे, क्या पसंद करते हैं. तो ये सब सुनने के बाद मैंने एक आज से एक नया प्रोग्राम शुरू किया. तो आज से हम एक टॉपिक चुनेंगे, उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे. लेकिन जैसे जैसे मुझे आपसे, जो सुन आप लिसनर्स हैं, इन आपसे कम्युनिटी से कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि कोई शो हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है या कोई नई चीज़ हो रही है सिडनी में जिसके बारे में सबको जानना चाहिए, वो आप मुझे बताएं, तो फिर मैं ज़्यादा उसके बारे में भी बात कर सकती हूँ. लेकिन आज के लिए मैंने एक टॉपिक चुना है जो थोड़ा बॉलीवुड से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा, मैं जैसे लोग बहुत चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं, मैं और मेरी एक और दोस्त है, हम दोनों ना बॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेते हैं. वो अगर सुन रही है तो उसको पता है कि कौन है. तो मैंने सोचा कि बॉलीवुड में बहुत पहले ये होता था कि बॉलीवुड हीरोइन या फिर जो एक्ट्रेसेस होती थी, दे वर नोन फॉर देयर ब्यूटी, मतलब उनकी खूबसूरतता के लिए, उनके डांस के लिए या फिर उनके जैसे कपड़े पहनते हैं इसके लिए मशहूर थी. लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जहाँ बॉलीवुड की जो लीडिंग सितारे हैं वो एक बिजनेस में आ गई हैं, एक बिजनेस मुगल जैसे, अपना खुद का बिजनेस और अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया है. अगर आप और कुछ जानते हैं इसके बारे में तो ज़रूर मुझे बताएं. लेकिन अभी हम आज के शो में कुछ चंद सितारों की बातें करने वाले हैं जो टाइकून्स बन गई हैं बिजनेस में और उनका ब्रांड काफ़ी अच्छा चल पड़ा है. कुछ ब्रांड्स तो अब्सॉर्ब हो गया है बड़ी कंपनी में, कुछ ब्रांड्स ने बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप किया है. तो इन सब के बारे में और बातें करेंगे और दिलचस्प बातें करेंगे, और जहां हो सकता है मिलते जुलते गाने भी बजाएंगे, उन हीरोइन पे फिल्माए गए गाने भी बजाएंगे. लेकिन थोड़ी देर में, पहले तो एक तो अपडेट ये था कम्यूनिटी में, जो आम का फेस्टिवल होने वाला था वो अनफॉर्चुनेटली क्वारंटीन की वजह से आम आए नहीं, तो बहुत लोग डिसअपॉइंट हो गए. तो होपफुली आपको अपने आम मिल गए हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्सुलेट ने कहा था कि आप तक पहुंचाएंगे. लेकिन और इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन आज हम सितारों के बारे में बात करने वाले हैं. पहले ये गाना सुने, उसके बाद हम बात करते हैं. और

0: करते
1: हेलो और नमस्ते और आपका स्वागत है वापस इंडिया कनेक्ट में वीना शशि कुमार के साथ. और हम आज बात करने वाले थे फिल्मी सितारों, इंडियन एक्टर्स जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है एंड स्पेशली जो फीमेल एक्टर्स हैं उनके. मैंने जितना रिसर्च किया कि मैं तो चौंक गई जितना ही रिसर्च के बारे में. एक तो इतने वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में हैं. पहले तो हम ओजी एक्ट्रेस जो मैं जब पैदा हुई थी, मेरे जब मैं बड़ी हुई थी, हम जो मूवीज़ देखते थे उसके हिसाब से पहले शुरू करती हूँ. जो ओरिजिनल एक्टर्स सुपरस्टार्स माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ, ठीक है. तो एक तो है जो धक धक क्वीन माधुरी दीक्षित, बड़ी ब्रिलियंट एंजल इन्वेस्टर हैं. उन्होंने जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत पहले से शुरू कर दिया था. इनका तो मैंने यूट्यूब में, मैं इनके साथ नाचती भी थी कोविड के टाइम पे. आई डोंट नो कितने लोगों ने किया था ये, लेकिन डांस विद माधुरी एक इन्होंने शुरू किया था, ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी. इनकी पहली, मतलब शी वॉज द फर्स्ट सेलिब्रिटी लेड ऑनलाइन अकेडमी. फिर इनके हस्बैंड के साथ इन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, RNM मूवीज, मूविंग पिक्चर्स. और स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, तो बहुत स्मार्टली प्री IPO इन्वेस्टमेंट्स और ओयो और स्विगी, ऐसे इसमें उनका इन्वेस्टमेंट है. और इन्होंने बहुत सारे हाई वैल्यू मुंबई में कमर्शियल रियल एस्टेट भी ओन करती हैं. ऑलमोस्ट 250 करोड़ इनका नेट वैल्यू है एज ऑफ राइट नाउ, जो इनका इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू है. तो इन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, बहुत पहले इन्होंने ये ऑनलाइन गेम में इनकी शुरुआत हो गई थी, विच वॉज़ सो गुड टू सी. एंड प्रोडक्शन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, शी इज़ एवरीवेयर. जूही चावला आप तो जानते ही होंगे, जो IPL देखते हैं वो तो जानते ही होंगे. कोलकाता नाइट राइडर्स में इनका काफ़ी डोमिनेशन है. शाहरुख खान के साथ इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स में को ओनर हैं. फिर इन्होंने स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट में पहली शुरुआत की थी अपने आप. शी ऑल्सो यूज टू ओन अ प्रोडक्शन हाउस शाहरुख खान के साथ. फिर इन्होंने बिजनेस में भी, इनका काफ़ी अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में भी इनका काफ़ी स्टैंडिंग है. और टिकट सेल्स, तो क्रिकेट क्रिकेट के जो टिकट सेल्स में, सेल्स रिलेटेड कंपनी में भी इनका हाथ है. तो इनका नेटवर्थ 4,600 करोड़ है, विच इज़ जस्ट अमेजिंग. मतलब शी इज़ वन ऑफ द वेल्दीएस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर्स इंडिया की. इनके अलावा जो मैं, जिनका मैं मेंशन करना चाहूँगी, वो है आलिया भट्ट. आलिया भट्ट ने जब वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने शुरू किया था अपना कंपनी एड अमामा, जो सस्टेनेबल किड्स वेयर और मटर्निटी वेयर के लिए था, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी ये यू नो वो सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप वाला ये शुरू किया था. और ये लॉन्च हुआ था 2020 में और इनको ख़रीद लिया रिलायंस में, रिलायंस ने अपने ब्रांड के लिए. तो उन्होंने जाके अपना ये बेच भी दिया. अब उनका नेटवर्थ है 260 करोड़. तो आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने ये थोड़ा गलत कर लिया, बट इनका नेटवर्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, 400 करोड़ के आसपास है. तो ये कुछ हैं और हैं, मैं और बात करूँगी इनके बारे में पहले, लेकिन जैसे आलिया भट्ट से ख़त्म किया है, आलिया भट्ट का एक प्यारा गाना सुने, उसके बाद मैं वापस आती हूँ और डिटेल्स के साथ.

0: Alive 90.5. Alive 90.5. All the way from the 70s, 80s, 90s and today.
1: Looking for a fresh approach to real estate? At Bookfitch Estate Agency, we put people first, making the process smooth and stress-free. Whether it's selling your home, managing your investment, or finding your next move, we're here for you. Discover how property should feel professional, personal, and tailored to you. Visit us online at bookfitchestateagency.com.au or follow us on socials today.
2: Station sponsor.
3: Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you. 9604 9604. Station sponsor.
4: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में. पहले हमने बात किया था जूही और माधुरी का और अभी हम मेरे पास और दो और मैंने काफ़ी रिसर्च किया है तो एटलीस्ट 10-15 तो हैं लेकिन सारे शायद ये शो में हम कवर नहीं कर पाएँ. लेकिन अगला मैं बात करना चाहूँगी दीपिका पादुकोण का और श्रद्धा कपूर का. तो दीपिका पादुकोण ने अपना आयुर्वेदिक स्किन केयर, सेल्फ केयर और आयुर्वेदिक ब्रांड लॉन्च किया था 82 डिग्रीज ईस्ट 2022 में ये आया था. और ये अपने खुद के उनका जो बिलीफ है कि भाई स्किन केयर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड स्किन केयर, वो ये चीज़ों के बारे में वो काफ़ी ओपनली भी बात करती हैं. तो उन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए 82 डिग्रीज ईस्ट लॉन्च किया और ये साइंस पैक्ड है. काफ़ी अच्छा स्किन केयर है जो जितना मैंने सुना है. और उनका जो प्रोडक्शन हाउस है का प्रोडक्शंस जो कहानियाँ जो सॉलिड कहानियों के बारे में बात करता है, एंटरटेनमेंट के आगे बात करता है, जहां लोगों के इश्यूज और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है इनको हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ये स्पेसिफिक प्रोडक्शन हाउस खोला है जो काफ़ी अच्छा वो बिल्ड कर रही है उसको अभी. लेकिन उनका स्किन केयर ब्रांड काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है मार्केट में और इनका पार्टनरशिप नायका के साथ है. तो इसके साथ उनका पर्सनल वर्थ और उनका प्रोडक्शन हाउस और उनके स्किन केयर के साथ उनका पर्सनल वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है और काफ़ी पावर हाउस हैं, कॉर्पोरेट पावर हाउस हैं, काफ़ी बिजनेस डिसीजंस अच्छा लेती हैं. और ये हुआ दीपिका पादुकोण की बात. और फिर मैंने कहा था श्रद्धा कपूर के बारे में बात करेंगे. ये काफ़ी सोशल मीडिया में काफ़ी छाई हुई होती हैं. अगर आपने सुना है इनका काफ़ी क्या कहते हैं, इनका एक्सेंट्स भी काफ़ी अच्छा कर लेती हैं. और अभी मैंने देखा इनका एक नया मूवी आ रहा है इन मराठी तमाशा के बारे में. तो इनकी एक्टिंग तो एक तरफ अच्छी खासी जा ही रही है. इन्होंने अपना आपने देखा स्त्री स्त्री सीरीज़ में तो इनका आप काफ़ी पॉपुलर हुई हैं. तो इन्होंने अपना इको फ्रेंडली फैशन लेबल शुरुआत किया है जिसका नाम है इमारा, जो सस्टेनेबल प्लांट बेस्ड फूड स्टार्टअप है. सस्टेनेबल फैशन लेबल कॉल्ड इमारा. और उन्होंने अपने फैश प्लांट्स और फूड स्टार्टअप में भी अपना काफ़ी इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है. और इनका पोर्टफोलियो जो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी काफ़ी बड़ा है, अभी बिल्ड कर रही हैं. और इनका नेटवर्थ अभी 130 करोड़ तक का है एज ऑफ राइट नाउ. इनका जो इन्वेस्टमेंट्स है, पर्सनल ब्रांड तो 130 करोड़ है लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से इनका जो माई ग्लैम है, जो प्लान माई ग्लैम है, फिर इमारा है और जो फूड स्टार्टअप्स में है, इसके हिसाब से इनका इनका आता है वैल्यूएशन अराउंड 800 करोड़. तो काफ़ी पावरफुल लेडीज हैं. इन इनके बारे में सुन के ना काफ़ी मुझे हिम्मत भी मिलती है कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से. तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा इन्वेस्टमेंट्स, हमारा मोटिवेशन सिर्फ किताबों से आए, ऐसे फिल्मी सितारों से भी आ सकते हैं. मेरी तो काफ़ी आती हैं. गाने से पहले हम एक हेल्थ NSW का एक समाचार है. टीकाकरण खासकर काली खांसी आदि गंभीर बीमारियों से बच्चों की रक्षा करता है. अपने डॉक्टर से बात करके ये सुनिश्चित करें कि क्या आपके बच्चों को समय अनुसार सभी टीके लग गए हैं. तो ये आप टीकों के बारे में देख लें, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है. उसके बाद आप सुने अभी एक अच्छा गाना श्रद्धा.

0: Alive 90.5.
1: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.heartwoodfloors.com.au. स्टेशन स्पॉन्सर
2: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. अच्छा अभी हमने बात कर ली ऑलमोस्ट पांच एक्ट्रेसेस की. हम बात कर रहे हैं आज एक्ट्रेसेस जो बिजनेस वुमेन भी हैं. तो प्रियंका चोपड़ा जोनस इनके इनके इनके बारे में तो बात डेफिनेटली बनती है. तो इन्होंने एक हेयर केयर ब्रांड शुरू किया था. एक बार मैंने सुना था कि प्रियंका चोपड़ा जो हैं वो काफ़ी अपने हेयर के हेयर से ना बहुत प्यार करती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं. तो अपने खुद के बल पर उन्होंने एक हेयर केयर ब्रांड शुरू किया एनोमली 2021 में, जो काफ़ी इको फ्रेंडली ब्रांड है. वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल है. तो इन्होंने ये शुरू किया ताकि ये खुद भी यूज़ कर सकें और दूसरों को भी एक अफोर्डेबल क्रुएल्टी फ्री ब्रांड लेके आ सकें उनके लिए. इनके अलावा ये एक मूवी हाउस भी चलाती हैं, पेबल पिक्चर्स, जो जिसका फोकस काफ़ी डिफरेंट है. रीजनल इंडियन सिनेमास के ऊपर है इनका फोकस. और ये काफ़ी पावरफुल इन्होंने बहुत काफ़ी इनके साथ काफ़ी कुछ हुआ है बॉलीवुड में. जो बॉलीवुड को फॉलो करते हैं वो जानते भी होंगे कि पहले बॉलीवुड से इनको थोड़ा निकाल दिया गया, फिर उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिली. जब इनकी शादी हुई तभी भी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिली. लेकिन और ये पहले जब अमेरिका में थी इनकी बुलिंग हुई थी, तो इनका कल्चरल उन सब के ऊपर आई हैं. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. मैं काफ़ी एडमायर करती हूँ इनको, इनकी जर्नी को, और इनकी जर्नी इनके एंटरप्रेन्योरशिप को शेप करता है और काफ़ी पावरफुल वे में शेप करता है. और इनका जो ग्लोबल एम्बिशन है सबके ऊपर छाने का, वो काफ़ी अच्छा सेट हो रहा है. मूवीज़ कर रही हैं, हॉलीवुड भी कर रही हैं, बॉलीवुड भी कर रही हैं, तो इनका और तेलुगु मूवी भी कर रही हैं, तो हर जगह पर छाई हुई हैं. और आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट कि इनका जो शो है, इनका जो बिजनेस है, सारी चीज़ें एक साथ अच्छा चले. और इनका काफ़ी ही अच्छा फुट बिजनेस इन्वेस्टमेंट का इनका काफ़ी हाई है. जो एनामली ब्रांड है वो ऑलमोस्ट 4,500 crores का है, और इनका पर्सनल जो नेटवर्थ है 600 crore के आसपास है. तो ये ऑफिशियली काफ़ी बड़ी बिजनेस टाइकून है. इनके अलावा जो नेक्स्ट वाली जो बिजनेस टाइकून के बारे में बात कर रही हूँ, उनका नाम है कृति सनोन. उनका नया मूवी भी निकला है अभी. आई डोंट नो किसने देखा है, मैंने अभी तक नहीं देखा है. लेकिन इन्होंने को फाउंड किया है एक स्किन केयर ब्रांड को, जिसका नाम है हाइफन 2023 में. काफ़ी इनका लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में और लग्जरी रियल एस्टेट में भी इनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इसके साथ. और ये जो ब्रांड है ये काफ़ी पॉपुलर है और इनका काफ़ी ग्रो भी हो रहा है. एज ऑफ राइट नाउ 400 करोड़ का इनका ग्रो सेल है और इनका पर्सनल नेटवर्थ 130 करोड़ के आसपास है. इनका ऑलमोस्ट 60% रिपीट कस्टमर्स हैं इनके. और ये सारे जो एक्टर्स अपना अपना ब्रांड शुरू करते हैं, ये काफ़ी इको फ्रेंडली और कॉन्शियस ब्रांड शुरू कर रही हैं, सस्टेनेबल ब्रांड शुरू कर रही हैं. तो अगर आप जा रहे हैं इंडिया, आपको चेकआउट करना है तो ज़रूर चेकआउट करें. या फिर आपके पास कोई और ऐसे इंटरेस्टिंग टिडबिट्स हो तो मुझे ज़रूर बताएं. ये कृति सनोन तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो उनका दिमाग इंजीनियरिंग वाला, टेक वाला दिमाग वो बिज़नेस में लगा रही हैं आजकल. तो ज़रूर इस्तेमाल करके बताएं कि आपको क्या लगता है आपके हिसाब से. और फिर हेल्थ NSW का अगले कृति सनोन के गाने से पहले हेल्थ NSW का एक विशेष सूचना. आपकी वार्षिक फ्लू वैक्सीन आपको गंभीर रोगों से सुरक्षित रखता है. आज ही अपने GP या फार्मासिस्ट के साथ इसके बारे में बात करें. healthdirect.gov.au NSW फ्लू वैक्सीन पर जाएं. और इसी मैसेज के साथ अगला गाना सुने कृति सनोन का.

0: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family. Station sponsor.
1: Thanks for listening to Alive 90.5. If you enjoy the service Alive provides to the community, then why not become a member of the station today? Head across to our website, alive905.com.au, scroll down the page and click on the general volunteering link to download a membership application. Become a voice of the community with Alive 90.5.
2: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. अच्छा अभी हम मेरे ये मेरी काफ़ी इंस्पिरेशन वाली एक लेडी हैं. इन्होंने ज़्यादा इनकी एक्टिंग करियर काफ़ी लंबी नहीं थी लेकिन इन्होंने इसके अलावा भी काफ़ी मार्क छोड़ा है. डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना इन्होंने ज़्यादा जैसे मैंने कहा था ज़्यादा मूवीज़ की नहीं है लेकिन ट्रांजिशन कर लिया इन्होंने बड़े एक इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस में द वाइट विंडो और इनकी काफ़ी किताबें फेमस हुई हैं. काफ़ी स्मार्ट लिखती हैं. इनका कॉलम आता है मिसेस फनी बोन्स और काफ़ी स्मार्ट हैं. तो मैं किसी को जानती थी जो इनको सिखाती थी. जो शी इज़ एलुमनाई ऑफ मिठीबाई कॉलेज जहाँ से मैं हूँ तो वहाँ इन्होंने इनकी जो टीचर थी इन्होंने काफ़ी बात किया हुआ इनके बारे में कि भाई ये बड़ी स्मार्ट है और बेस्ट सेलिंग ऑथर. इन्होंने फाउंड इन्होंने ट्वीक इंडिया करके एक डिजिटल कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म का भी फाउंडेशन डाला था. तो और डिजिटल प्लेटफॉर्म केटरिंग सिर्फ विमेन के लिए है ना. तो उन्होंने ये इसकी शुरुआत की थी मिसेस फनी बोन्स. और इनका यहाँ वहाँ तक ट्वीक इंडिया तक बंद नहीं होता है. इनका जो ये प्लेटफॉर्म है ये डायरेक्टली मॉडर्न विमेन के लिए है. उनका बिजनेस फोकस करता है एम्पावर करने को विमेन के लिए. और बहुत अच्छा लिखती हैं लाइफ स्टाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेबल जो डिजिटल स्टोरीज होती हैं इसके बारे में ये काफ़ी अच्छा करती हैं. इनका जो नेटवर्थ है पर्सनल नेटवर्थ है 250 करोड़ से ज़्यादा है. और री इन्वेंटिंग अ करियर में ये इनसे सीख लेना चाहिए कि इन्होंने कैसे अपने एक्टिंग करियर को छोड़ इंटीरियर डेकोरेशन मीडिया हर जगह पे अपना हाथ ट्राई किया और हर जगह पे सक्सेसफुल भी हुई हैं. तो ये ट्विंकल खन्ना की कहानी है. इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी शीला की कैटरीना कैफ की. इन्होंने शुरू किया था के ब्यूटी और के ब्यूटी का मोटो है इट्स के टू बी यू इन द सेंस इट्स ओके टू बी योरसेल्फ. और ये एक हाई इनका भी टाइप है नायका के साथ. 2019 में इन्होंने शुरुआत किया था. और ये के ब्यूटी के साथ इनका ये भी एक सस्टेनेबल ब्रांड है इंक्लूसिव ब्रांड है. ये इनको लगा कि बहुत सारे विमेन अपने कलर्स अपने स्किन के हिसाब से ना एक्सक्लूडेड फील करती हैं. तो इन्होंने ये शुरुआत की ये ब्रांड शुरुआत की इंक्लूड करने के लिए सबको इंक्लूड करने के लिए. तो ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस वुमेन है. इनका जो पर्सनल वर्थ है मेकअप एम्पायर और फिल्म के साथ इनका जो पर्सनल वर्थ है 260 करोड़ के आसपास है. और ये खुद तो ग्लैमरस हैं ही और उन्होंने बाकी औरतों को भी ग्लैमरस बनाने का ठेका लेके रखा है जो बहुत अच्छी बात है. इनका इनको देख के लगता है कि ये दिल से कुछ काम करती हैं जो भी करती हैं पूरा मन और मेहनत लगा के करती हैं. सो देर ऑल वेरी इंस्पायरिंग वुमेन. ये के ब्रांड के ब्यूटी ने तो पूरा अपना छाप छोड़ी है पूरे इंडस्ट्री में पूरे इंडिया के इंडस्ट्री में. तो अगर कोई ट्राई करता है तो मैं आपका भी सुझाव लेना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में. और कैटरीना कैफ की एक गाने कैटरीना कैफ के मूवी की गाना का गाना है. उसके पहले हेल्थ NSW का एक आखिरी समाचार. क्या आपकी आयु 65 साल या इससे अधिक है? इस बार सर्दियों और सर्दियों में गंभीर रोगों से अपनों और दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकरण करवाएं। आपके लिए कौन सा टीका सही है इसके बारे में अपने जीपी या फार्मासिस्ट से बात करें। इसके बाद ये गाना सुने, अब हम जल्दी लौट आएंगे।

0: Alive 90.5. It's all I listen to. Alive 90.5. Playing cool music.
1: Alive 90.5.
2: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. अच्छा अभी हम लास्ट सिर्फ तीन लोगों के बारे में बात करेंगे और पहले है अनुष्का शर्मा. अनुष्का शर्मा ने एक क्लीन क्लोथिंग फैशन लेबल नश शुरू किया था और इसके साथ उन्होंने शुरू किया है क्लीन स्लेट फिल्म्स, जो एक प्रोडक्शन हाउस है जहां अक्लेम्ड स्ट्रीमिंग सीरीज और मूवीज बनती हैं. कुछ जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो है NH10, पाताल लोक, बुलबुल, जिसमें फीमेल लेड प्रोडक्शन कंपनी है जहां बहुत सारी मूवीज जो फीमेल कैरेक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए बनाती हैं. इन्होंने अपने हस्बैंड विराट कोहली के साथ भी काफ़ी वेंचर्स शुरू किए हैं. बिजनेस पोर्टफोलियो इनका काफ़ी डाइवर्स है और इन्होंने इनका नेटवर्थ एज ऑफ राइट नाउ 480 करोड़ के आसपास है. काफ़ी स्मार्ट हैं और काफ़ी बिजनेसेस जहां ग्रोथ की संभावना है ऐसे बिजनेसेस में इन्होंने अपना हाथ रखा है. और जैसे हमने शुरू किया था दीवास के साथ, हम ख़त्म भी करेंगे. ऐसे नहीं कि ये बाकी दीवाज नहीं थी, लेकिन जो ख़त्म करने के लिए जो टॉप दो दीवाज मैंने चुने हैं वो हैं, एक तो है सुष्मिता सेन जो इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स हैं. इन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिया है और इनका बिजनेस पोर्टफोलियो इनके पर्सनालिटी के जैसा ही बोल्ड है. और इन्होंने एक मार्केट में को फाउंड किया है रेनी ज्वेलर्स दुबई में. फिर इनका एक डायमंड एम्पायर है अक्रॉस गल्फ एरिया. अपना खुद का प्रोडक्शन और टैलेंट एजेंसी है इनका तंत्रा एंटरटेनमेंट, जहां ये उन्होंने काफ़ी मेजर इवेंट्स के फ्रेंचाइजीज इन्होंने लॉन्च किए हैं इसके साथ. फिर इनका जो इंटरनेशनल एसेट्स के साथ इनका जो नेटवर्क है वो है, नेटवर्थ है 100 करोड़ के आसपास है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत है और जो मैं अभी शो सिर्फ एक घंटे का है तो इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती इसमें. तो जो लास्ट है इनकी मैं बात करना चाहूँगी वो है ऐश्वर्या राय बच्चन. स्मार्ट स्टार्टअप पोर्टफोलियो इनका काफ़ी है. तो वैसे तो इनका यू नो लग्जरी ब्रांड्स के साथ काफ़ी इनका एसोसिएशन है, जैसे लॉरियल है. उनका बोर्डरूम स्ट्रैटेजी सारे ना, इनका मेनली बहुत सारे स्टार्टअप्स पे कंसंट्रेट करती हैं. एंजल इन्वेस्टर हैं जैसे माधुरी दीक्षित के बारे में मैंने बताया था. इनके मनी, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करती है इको कॉन्शियस ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे एम्बी करके एक कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है. और इनका जो कोर स्ट्रैटेजिक बैकर है वो है न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर ब्रांड्स. काफ़ी सक्सेसफुल न्यूट्रिशन हेल्थ केयर ब्रांड्स जैसे पॉसिबल और बहुत सारे इनके ब्रांड्स हैं, ग्लोबल ब्रांड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके, जो ये स्मार्टली इन्वेस्ट करती रहती हैं हर जगह पे. तो इनका ये इनका जो नेटवर्थ है ये 900 करोड़ के आसपास है, विच इज़ अमेजिंग. सो ये जो ब्यूटीज़ हैं ये ब्रेन्स ब्यूटीज विथ ब्रेन्स हैं, जो ना कि सिर्फ कैमरा में अपना जलवा दिखाती हैं लेकिन बिजनेस में भी अपना जलवा दिखा रही हैं. और इनके इनके हिसाब से इनको अगर किसी को आप फॉलो करना चाहें तो काफ़ी बिजनेस फोरम्स में इन्होंने इनका इन्फॉर्मेशन भी है कि ये क्या कैसे करती हैं, कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाती हैं और किस हिसाब से इनका ये करती हैं. तो आप ज़रूर इसके बारे में देखें और पता करें कि ये क्या कर रही हैं, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से तो ये बड़ा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स प्लान, इनके इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी स्मार्ट हैं. तो अगला गाना ऐश्वर्या राय का एंजॉय करें, उसके बाद हम आते हैं.

0: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट के लास्ट सेक्शन में, जहां मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी. आप मुझे बताएं कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा और हम अगले हफ्ते एक नया एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे. और अगर आप कम्युनिटी में कोई इवेंट्स हैं या फिर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कुछ इवेंट्स के बारे में, कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में, जैसे सपा क्लब है और या फिर कहानी नानी है या फिर कुटुम्ब, जहां यू नो एक ग्रुप है जहां आप भजन होते हैं, योगा है, ये एक कम्युनिटी ग्रुप है जो लोगों को साथ लाता है. ऐसे अगर आपके पास और कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. आप स्टूडियो में आके आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं और हम काफ़ी सारे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं गानों के साथ. तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें इसके बारे में या फिर अलाइव 90.5 के स्टूडियो में मैसेज करें. तब अगले हफ्ते के लिए मैं विदा लेती हूँ. नमस्ते और थैंक यू सो मच आप सुनने के लिए अलाइव 90.5 का इंडिया कनेक्ट. अगले मैसेजेस के बाद एक लास्ट गाना, उसके बाद अगला कार्यक्रम शुरू होगा. थैंक यू.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of
0: उसके बाद अगला कार्यक्रम शुरू होगा. Thank you.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ.